बस को ना तो कि यो तो को लगा में जगह ले मुआ पाई बोल को ले जम जी तो आपको कोई को यही जम रही के को गा मुआ च मीना के नाम जाले जी ने ओ ये मेगे रात रे बिनिक चाहिए तो 15,000 ने को में तीन मा मुआ को 35,000 15,000 ने जगह जते जमन ए को तो गा सुबह होंगे ते लगा इनको तो मीनो को इनको नी को केलेल का पैसा ए केलेल मम्मी आजा बेर बेरन अमु को तीन तेरा बिने कितने जुमान 15,000 ही ने तगाई न्योर चिके को तारे तीन स्टाटस 74 आश नंबर 7 लबातू बा सासा मुंड का सनी नगेरे बिके का को इंजन का बिसा गांग काले चा को इंजन आगेरे तने किकुरे इन किकुरे ना किकुरे फेलेक्स आई का जो 1,500 आज तने किकुरे जेन का आज 600 साली का की का जो 1,000 आज तने किकुरे रोनाल्ड आगेरा की का जी 1,800 वे वे रोनाल्ड का बिसा न्यू इंग्लैंड ने का को चेजा न्यू 1,800 Agogen 15,000. Agogen 35,000. Addition, no subtraction. Sasa nguni kwa sani ni utoma 3 minutes. Toma dakika ishek somugu. Toma dakika ishek somugu wa mandangi utakupa studio. Ama ameja amanda, ama inyo sogoni. Kutko kai jutu wa kutomi inyoru bonus. Inyenda na watona ameja aguri ninguno. Iwege aktika titake nge utu yak bonus. Direct ya muka akupa saisha ki. Koi lase magiti aktarabi nijo. Toma atko ngitki aketo guling duka na atana. Siku ingo itu susana. Kiyo atin jajie kete. Agi jajie. So gai gai tapasali. Goswamin. Kutko gemi subuh angti tutiani. Jutu duka itu nambah 7 ninguni. Status 74 ash nambah 7. Kaguri ninguno itu kulo lemi. Status 74 ash nambah 7. Status 74 ash number 7. Mwenye atasikia hii nafanya tu kenye nimesema. Atafanikiwa. Ukiona nimetumia Kiswahili ujue mambo ni mzuri. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Kasta ile ndio ngwitu kwa laimi. Oya miaka kuzire na watu. Ngaguri nkapesa ngurin. Yaani ngaguri nkapesa na ngaguri ni mama.